समर्च क्रियते तस्य यमेन न चर्चा रत्या चर्पट विरचित कन्दः पुण्या पुण्य विवर्जित पन्दः योगी योग नियोजित चित्तो।

0: श्रीकाल वनकम चनाई, मैं रुचिका जैन आप सबका एमओपी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 107.8 में स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम बीकॉम एमएम की छात्राओं की तरफ से है और कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले परमात्मा का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसीलिए चलो सब मिलकर करते हैं परमात्मा की आराधना श्वेतांबरी के संग।
1: रब

0: दीजिए।
1: इस सुंदर भक्ति गीत को सुनकर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया है। धन्यवाद श्वेतामृत आपके इस सुंदर गीत के लिए। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में कई ऐसी चीजें जिसका ज्ञान हमें नहीं है, और कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसी चीज भी है जिसका हमें ज्ञान होते भी हमें यकीन नहीं है। तो आइए सुनते हैं कुछ रोचक तथ्य हर्षा के द्वारा।
2: रोचक तथ्य, पहला, एक गिलहरी की उम्र 9 साल तक होती है। दूसरा, एक वायलिन बनाने में लकड़ी के 70 विभिन्न आकार के टुकड़े लगते हैं। तीसरा, किसी भी तरह के सूखे कागज को आधा आधा करके 7 बार से अधिक बार नहीं मोड़ा जा सकता है। चौथा, विश्व में उपयोग की गई ऊर्जा का 88% कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस से मिलता है।
1: हर्षा, आपकी ये तथ्य सुनके तो हम सच्ची में आश्चर्यचकित हो गए हैं। धन्यवाद हर्षा ये कुछ तथ्य हमारे साथ बांटने के लिए। इस पीढ़ी में, इस काल में जहाँ सब नारियाँ अपने हक के लिए, अपने विकास के लिए लड़ रही है, उस द्वारे को समझाने के लिए आ रही है यशवी एक कविता के साथ।
3: नारी तुम हो सबकी आशा, किन शब्दों में दू परिभाषा, नारी तुम हो सबकी आशा। सरस्वती का रूप हो तुम, लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम, बढ़ जाए जब अत्याचारी, दुर्गा काली का स्वरूप हो तुम। खुशियों का संसार हो तुम, प्रेम का आगार हो तुम, घर आंगन को रोशन करती, सूरज की दमकार हो तुम। ममता का सम्मान हो तुम, संस्कारों की जान हो तुम, स्नेह प्यार और त्याग की इकलौती पहचान हो तुम। कभी कोमल फूल गुलाब सी, कभी शक्ति के अवतार सी, नारी तेरे रूप अनेक, तू ईश्वर के चमत्कार सी।
1: धन्यवाद यशवी आपके इस कविता द्वारा हम सब नारियों को प्रेरित करने के लिए, इस कार्यक्रम को और रोमांचक बनाने के लिए। चलो सुनते हैं कुछ चुटकुले दक्षा से।
4: अच्छी खबर, एक नव विवाहित पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पति को गले लगा लिया और उसने कहा, मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। पत्नी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा, कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है।
1: दक्षा, वाकई में आपके चुटकुले बहुत ही मजेदार थे। धन्यवाद दक्षा आपके इन चुटकुले के द्वारा हमें हंसाने के लिए। अब आती है कुछ सीखने की बारी, तो चलो सीखते हैं कुछ सिमरन और रिधिका से एक कविता के द्वारा।
5: हमारी जीवन में सबसे प्रिय इंसान हमारी माँ है। माँ शब्द में ही इतनी शक्ति है कि यह शब्द सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम चाहे कितने भी निराश क्यों ना हो, माँ को याद करते ही हमारी निराशा पल भर में दूर हो जाती है। यह कहानी माँ के व्यक्तित्व का एक अद्भुत उदाहरण है।
6: पेंसिल और रबर की कहानी। एक दिन एक पेंसिल ने रबर से कहा, मुझे माफ कर दो।
5: क्यों, क्या हुआ, तुम माफी क्यों मांग रही हो?
6: मुझे यह देखकर दुख होता है कि तुम्हें मेरे कारण तकलीफ पहुंचती है। जब कभी मैं कोई गलती करती हूँ, तब तुम हमेशा उसे सुधार देते हो। मेरी गलतियों को मिटाते मिटाते तुम खुद को तकलीफ पहुंचाते हो, और तुम धीरे धीरे छोटे होते जाते हो और अपने अस्तित्व को ही खो देते हो।
5: तुम सही कहती हो, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि जब कभी तुम गलती कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। मुझे पता है कि मैं एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले तुम्हें गलतियां ना करना एवं गलतियां सुधारना सिखा दूं, ताकि जब मैं ना रहूं तो तुम जीवन की इस यात्रा में कभी खुद को कमजोर महसूस न करो।
6: पेंसिल और रबर के बीच यह बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं। हमारी माँ भी रबर की तरह हमारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहती है। कभी कभी हमारी वजह से उन्हें दुख भी उठाना पड़ता है, लेकिन वो हमारी खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देती है।
5: जो लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी और शहर में रहते हैं, वे माँ से दूर रहने का दर्द जानते हैं। वे लोग माँ को हर पल याद करते हैं और शायद कभी कभी उनके मन में यह गाना गूंजता रहता है, या फिर यह गाना सुन के ही उनके आंखों से स्वतः ही आंसू निकल आते हैं।

0: तक उन्होंने हमारी खुशियों के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम उनकी खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करें। आइए आज से और अभी से एक प्रतिज्ञा लें कि हम कभी भी अपने माता पिता को दुख नहीं पहुंचाएंगे। धन्यवाद।
1: रिद्धिका और सिमरन, आपकी इस सीख को जो आपने कविता के द्वारा हम सबको बताई है, हम कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद सिमरन और रिद्धिका।
2: मुझे तो अभी गाना सुनने का मन कर रहा है, आपको भी कर रहा होगा, तो चलो सुनते हैं कुछ गाना भाविका, निकिता और वृत्तिका से।

0: अब तीनों ने बहुत ही सुंदर गाया। धन्यवाद भाविका, वृत्तिका, निकिता, आपका सॉन्ग सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। आओ दोस्तों, आपको मिलाते हो दो दोस्तों से, जो अपनी नोक झोंक में सुलझाते हैं पहलिया और बढ़ाते हैं अपना प्यार।
1: सलोनी, तुझे पता है मुझे अपने कॉलेज में पहलिया सुलझाने के लिए पहला पुरस्कार मिला है।
2: अच्छा, सुलझाने में इतनी ही माहिर हो तो ये पहली सुलझा के बताओ। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, एक रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए, बताओ कौन?
1: शायद भिखारी?
2: नहीं, शेर।
1: हाँ हाँ, मैं तो यही बोलने वाली थी, गलती से मिस्टेक हो गया।
2: अच्छा, तो फिर ये दूसरी पहली सुलझा के बताओ। नहीं मैं मिलती बाग में, आधी फल हूँ आधी फूल, काली हूँ पर मीठी हूँ, खाके न पाए कोई भूल।
1: शायद इसका जवाब गुलाब जामुन है।
2: हाँ, सही जवाब। वाकई में तुम पहेलियाँ सुलझाने में बहुत अच्छी हो।
0: लगता है ये कार्यक्रम बहुत ही लंबा चल रहा है, मुझे तो भूख लगने लगी है। मुझे कुछ मीठा सा, चॉकलेटी सा खाने का मन कर रहा है, तो चलो सीखते हैं चॉकलेट फज बनाने की रेसिपी अक्षिता से।
3: हम चॉकलेट फज बनाने वाले हैं। इसकी विधि बहुत ही सरल है। सामग्री 300 ग्राम चॉकलेट, 150 ग्राम फ्रेश क्रीम। इसकी विधि है, पहले चॉकलेट को एक पतीले में डालकर पिघला दीजिए, फिर फ्रेश क्रीम और चॉकलेट को अच्छी तरह से मिला दीजिए, फिर उस मिश्रण को एक डब्बे में डालकर 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। फिर जब मिश्रण अच्छी तरह से जम जाए, उसे काट कर प्रस्तुत कर दीजिए। आपका स्वादिष्ट चॉकलेट फज तैयार है।
0: यम, सच्ची में कितनी स्वादिष्ट है ये डिश और कितनी सरल भी है बनाने में। धन्यवाद अक्षिता ये रेसिपी हमारे साथ बांटने के लिए। होता है इस कार्यक्रम का अंत। आपसे मिलके, आपसे बातें करके, आपसे कुछ सीख के, आपको कुछ सिखा के हमें बहुत आनंद आया और आशा है कि आपको भी आया होगा। और जाने अनजाने में कुछ भूल चुक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और सुनते रहिए MOP कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 107.8।

0: तुझे पता है सिमरन, आज मैं प्यार मोहब्बत की बातें बोलने वाली हूँ।
1: प्यार मोहब्बत? क्यों, तुझे प्यार हो गया?
0: अरे ठीक है, मैं एक शेर बोलती हूँ, अगर अच्छा लगे तो दाद दे देना।
1: ठीक है दे दूंगी।
0: पतझड़ से पत्ते गिरते हैं कोई कोई, प्यार और भाई बहन का रिश्ता तो सभी जगह होते हैं, पर वक्त आने पर निभाता है कोई कोई।
1: वाह वाह वाह सुनीता, क्या शायरी थी।
0: धन्यवाद धन्यवाद, वैसे ये खुद मैंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा था। और आज मैं बुलाने वाली हूँ हर्षा को, वो हमारे लिए छोटी सी कविता सुनाने वाली है जो उसने खुद लिखा है।
2: राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूली ने समाई, राखी रोड़ी और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई, बांधे भाई की कलाई पे धागा, भाई से लेती है ये वादा, राखी की लाज भैया निभाना, बहना को कभी भूल न जाना, भाई देता बहन को वचन, दुख उसके सब कर लेगा हरन, भाई बहन को प्यारा है, त्योहार राखी का न्यारा है, त्योहार राखी का न्यारा है। धन्यवाद।
0: ये तो मुझसे भी अच्छी थी हर्षा।
1: बहुत धन्यवाद हर्षा, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है।
0: भाई बहन के रिश्ते के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हम बुलाना चाहेंगे शीतल और विदुषा को, वो उनके भी दो भाई हैं। हम सुनना चाहेंगे कि वो कैसे अपने रिश्ते को देखते हैं।
3: हमारे समाज में हर रिश्ते को कोई ना कोई नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह आदमी और औरत के भी कई रिश्ते हो सकते हैं, मगर उन रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता भाई बहन का रिश्ता होता है। यह रिश्ता हर रिश्ते से मीठा और प्यारा रिश्ता होता है। भाई बहन का एक दूसरे के प्रति प्रेम व विश्वास होता है। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है, जो आज भी हमें अपने परिवार व संस्कारों से जोड़े रखे है। रक्षाबंधन बहन की रक्षा की प्रतिबद्धता का दिन है, जिसमें भाई हर दुख तकलीफ में अपनी बहन का साथ निभाने का वचन देता है। यही वह वचन है जो आज के दौर में भी भाई बहन को विश्वास के बंधन से जोड़े हुए हैं। राखी के साथ एक और ऐतिहासिक प्रसंग जुड़ा हुआ है। मुगल काल के दौर में जब मुगल बादशाह हुमायूं चित्तौड़ पर आक्रमण करने बढ़ा, तो राणा सांगा की विधवा कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा वचन ले लिया। हुमायूं ने इसे स्वीकार करके चित्तौड़ पर आक्रमण का ख्याल दिल से निकाल दिया और कालांतर में मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज निभाने के लिए चित्तौड़ की रक्षा हेतु बादशाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और मेवाड़ राज्य की रक्षा की।
1: थैंक यू शीतल, रक्षाबंधन के बारे में तो सुन लिया, पर अभी भी एक डाउट है, रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? विदुषा हमारे साथ है, वो बताएगी कि रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं।
0: प्रातः स्नानदी से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अबोश देवता की पूजा की जाती है, इसके बाद रोली या हल्दी के बाय का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है, दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसों से न्यौछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। भारत के अनेक प्रांतों में भाई के कान के ऊपर बोझली या बुझरिया लगाने की प्रथा भी है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। पुरोहित तथा आचार्य सुबह सुबह याजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र और भोजन आदि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई के समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इससे अछूते नहीं है।
4: धन्यवाद विदुषा, आपने जो भी बोला बहुत ही प्यारा और अच्छा था, और मैं भी उसे राखी बांधकर ऐसे ही कुछ त्योहारों का मजा ले पाती।
1: सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने भाई और बहन से प्यार से रिश्ते निभाना।
0: भूख लगी है, जोर जोर से भूख लगी है। वैसे शीतल, तुझे भूख लगी है क्या?
1: भूख लगी है? हाँ, थोड़ी बहुत तो भूख लगी।
0: यहाँ पर खाना तो मिलने वाला है नहीं, तो क्यों ना दिलप्रीत से कुछ रेसिपी इसी शेयर कर ले। घर पे जाकर खाना बनाने में बहुत ही आसानी होगी।
1: बहुत मस्त आइडिया है।
4: दिलप्रीत प्लीज अपना रेसिपी शेयर करो।
5: स्वादिष्ट पनीर बटर मसाला बनाने की विधि। सामग्री: दूध, नमक, लाल मिर्च, प्याज, टमाटर और मक्खन। बनाने की विधि: पहले पनीर को बनाने के लिए दूध में विनेगर डाल दें और थोड़ा गाढ़ा होने तक इंतजार करें। उसके बाद उसे छान लीजिए और उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ग्रेवी बनाने की विधि: प्याज और टमाटर को अच्छे से पीसकर कढ़ाई में डाल दीजिए और उसमें नमक और लाल मिर्च डाल के थोड़ा पकने तक इंतजार करें। उसके बाद थोड़ा हिलाते हिलाते उसमें दूध मिलाइए। अब अगर ग्रेवी जैसा बन जाए तो उसमें पनीर डाल दीजिए और उसे थोड़ी देर तक पकाएं, करीब 5 से 10 मिनट तक पकाएं। अब पनीर बटर मसाला तैयार है। उसको उसके ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़ा धनिया और थोड़ा मक्खन और डाल दीजिए और स्वादिष्ट पनीर बटर मसाला तैयार है।
4: धन्यवाद दिलप्रीत, रेसिपी सुनकर तो मुझे बहुत ही भूख लग गई। घर पर जाकर और भी रेसिपीज ट्राई करूंगी और पेट भर कर खाऊंगी।
1: हम है राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।
4: गुड बाय दोस्तों।